एसएस आधी खुला खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेटी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सैंजा।

0: सुनिए ना, आइले हमरो गाड़ी में 10 बजे के छा
1: ए समय को साथ मा जितु सुनचादी पसल भुसाल पेट्रोल पंप सँगै चोडिएको डिपार्टमेन्ट स्टोर्स को पाँच घर अगाडि जैसी 15 तर्फ जाने बाटोमा कुनाको साइडमा विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरिद बिक्री गर्ने ठाउँ
0: सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो आदि खोला 105.4 आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् है।

0: access to all.
1: समी चो 14 के में बोदे लोटी पड़ी रो बैंगे ने विवरण पी भी है मुई खाता लिखे हमरो खई खई बहु कोई लोटरी भर दिलवा
2: आंगी समी जो लोटरी पड़ती हूं छामताई गुदी
1: बर्दी आ बर्दी वा लोटरी खाली पड़दिम बा सैली मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खनै बने खई बिसा खई मै विश्वास आनन फोनै खाले पनि आफै विवरण खई मै आपिन खबै बने वित्तीय संस्थाई के पासवर्ड पिन खई मै आरी सुमी बैंक आफै बने आरी
3: सतर्क सतर्क न ठगि सक्या फसेना
2: सिद्धार्थ बैंक क्यारे जन हितरी जारी संदेश
4: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरिलाई

0: सामाजिक सञ्जाल जी छ्यानले झाँझी मरी बुझी मरी ब्याङ्गैन आधिकारिक प्रोफाइल मात्र फलो लना खैबै बिनी लिङ्क खुल्दिउ भन्दा उहिसो सुखन क्या खलो सुजित मिलो खन यामो बिमारी छ्यानले खोना दे खुल्दिब वेबसाइट ना यूआरएल चेक लना आख्याबा घटना तल आपिबै लागि समय समय री आफैना पासपोर्ट फेरदिल परिम नुए टोए तारी शङ्ख लैदी भिसा बैङ्गरी यही मरी तुरन्त खबर लना
1: सतर्क तन ठगे तब त क्या जोगिना
2: सिद्धार्थ बैङ्गर क्याले जनहितरी जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ बैङ्क सम्बन्ध सधैँभरिलाई।

0: गर्भवती महिला को भिडियो एक्सरे सेवा,
1: सर्वसुलभ फार्मेसी सेवा।
0: संपर्क स्थान मिर्दी क्लिनिक, वालिङ नगरपालिका 6 मिर्दी, तल्लो चोक पुलको नजिकै।
1: फोन नम्बर 0364-41087, मोबाइल 98409701-44।